नमस्कार सुप्रभात। मुझे यह भी स्मार्टफोन मीटर क्षेत्र के 1304 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी हूँ और पूछ केंद्र से। आज शनिवार आषाढ़ दिनांक 6 शक संवत 1948 तारीख 27 जून 2026 अठारह सवा नौ 5 वगैरह 58 मिनट 36 सेकंड से छे। પ્રતિસભાની શરૂઆત કરીએ અને આપ સૌનું હાર્દિક અભિવાદન કરીએ મંગળ સ્વરથી।

से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्डिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों

0: क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशंस की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरु मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रस्तुत छह विचार बिंदु। विचार बिंदु में आज नो विचार। आज नी सवार पठन डॉक्टर मेरा सौरभ।

विचार बिंदु में आज ना विचार हो तो आज ही सवार पठन डॉक्टर मीरा सौरभू आकाशवाणी में पूछ केंद्र आप सामने रहा छो रज बने भक्ति संगीत नो कार्यक्रम अर्चना जहाँ सर्वथम समय अर्जुन देवी गोस्वामी ने रचना तुलसीदास दी।

होते आप असंभव हो। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अरविंद बागवतना शर्मा काजी मोहम्मद शर्मी रचना समय बाद हरि समय बचेराम कापड़े ने।

ESPD, शालाओंमां गुणवत्तायुक्त शिक्षणने वधु सशक्त बनावामां आवी रह्युं छे। गुणवत्ता शिक्षणमां श्रेष्ठतानी नवी ओळख बनी रही छे। विकसित गुजरातनो पायो मजबूत बनावतो गुणवत्तासभर शिक्षण, गुणवत्तायुक्त शिक्षण उज्ज्वल भविष्य। शिक्षण विभाग, गुजरात सरकार।

अपनी अपनी नाभि में अमृत छिपा रखा था। उसका वध करने के लिए श्री राम ने काल सर्पों के समान 31 वाण छोड़ी। एक वाण ने उसकी नाभि का अमृत सोख लिया तथा बाकी 30 ने उसके सिर और भुजाएं काट डाली। बिना सिर और भुजाओं वाले धन को प्रचंड वेग से दौड़ते देख श्री राम ने एक और वाण से उस रुंड के दो टुकड़े कर दिए जो जाकर मंदोदरी के सामने आ गिरे।

0: नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की

0: Wilson, Galacia Alfonso Wantem, Pungi Ketam Acid. Idem Prataram, Sri Ramajanma Bhumi Tirtha Kshetra Nyasina Prataram, Upaharanam, Dananam Cha, Vanjana Sambuddharupanam, Prakashanantam, Samukham Agatam. Nyasasya Anurodhena, Mukhyamantrina Yogina Adityanathina, Ekasya Vishishta Nirikshana Dalasya Sanghatanaya Adesha Pradattah. भारतीय तो विज्ञान विभाग ने अनुमितम यद सोमवासर यावत दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तराखंडेश लक्षद्वीप कतिपय क्षेत्र जलपात संभावना अस्त कोलकाता दुर्घटना आहता संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्त तत्र व्रणितानां उपचारः SSAM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशंस की यात्रा पर रवाना होंगे. श्री मोदी सेशंस के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशंस गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पूछ सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी. यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशंस के राष्ट्रपति

महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सशल्स भारत के विभिन्न महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

फैसला किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डंगो मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि इसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़ा दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हुलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विषय वच्चे मुकाबलो। आकाशवाणी नांदी वोड वडोदरा केन्द्र पर्थी प्रादेशिक समाचार पूरा थया। हवे पछी आप 7:45 राष्ट्रीय समाचार सांभळी शकशो। नमस्कार। गुरु नानक शब्द

0: समाचार करण में कोई होना चाहिए। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थी सेशंस में मुलाकात। सेशंस में राष्ट्रीय दिवस में स्वर्ण जयंती समारोह में अतिथि विशेष तरीके उपस्थित रहते। केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर खाते थे। भारत में प्रथम सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी में शुभारंभ करते। वेनेजुएला में भूकंप में मृत्यु आंक वृद्धि में 920 थो। भारत ने ऑपरेशन एमिश टाइड हेठ 35 टन राहत सामग्री मोकली। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल लेबनान वच्चे शांति करार की रूपरेखा जाहिर करी। भारतीय पुरुषों ने एफआईएच प्रो लीग हॉकी स्पर्धा में पाकिस्तान ने 7-1 से हराया। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थी सेशंस की 3 दिवसीय सत्तावार मुलाकात जैसे। प्रधानमंत्री आज सेशंस में राष्ट्रीय दिवस में स्वर्ण जयंती समारोह में अतिथि विशेष तरीके उपस्थित रहते। विदेश मंत्रालय एक निवेदन में जनाव्यू कि भारतीय नौकादल में 2 जहाजों साथ भारतीय संरक्षण दलों की टुकड़ी उजड़ी में भाग ले। मुलाकात दरमियान प्रधानमंत्री सेशंस में राष्ट्र प्रमुख डॉ पैट्रिक हरमन साथ बातचीत करते और द्विपक्षीय सहयोग में समीक्षा करते। दोनों नेताओं परस्पर हित में प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते। संघीय एक अहवाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशंस की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटनिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशंस कोस्ट गार्ड गेट बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशंस के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री

शुरू से घर पर दो बार का अपने चैंपियन उर्फ देख तो पैसे बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशंस की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशंस के रुपये दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशंस गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक कोच सहित भारतीय टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशंस के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ पत्र करेंगे और दोनों देशों को आपसी संबंध

0: समझौते के माध्यम से नए स्तर खोलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांगली, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यहाँ साथ ही भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का एक हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा से 14 प्रमुख शहरों में की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इस विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के करपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूख से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तान शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, उपकरण, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से नरेंद्र बेनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलबंदर मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच एक सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फतार ने कहा कि इस बार अंबे

0: विदेश मंत्री मार्को रूबी ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबी ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. The people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य ग्रामों के विकास और सहायता रणनीति तैयार करेंगे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

शर्मा और कल भी।

0: birlikte dönüyor. Grup C'nin önceden Erbenciyen tutan Mısır ve İran Rus ordusuna savunmasan yapıldı. Kendi kaşıntısına Amanda Fiyatlaki Surakşa Mülüsü'nün mezbut gazetini tekniği kaldı. Migrani Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Polonyi, Olsun da bagne taşın bölge tarafıyla Çekre, Sikkim, Asan ve Meyhane ve ağaç bulut ve başarılı anılar ve fikiye ve Atizgar, Kankar, Goa, Atay, Antipedeş, Karnatik, Tamilan, Pudicheri, Kerem, Nahi ve Pumutur Bharat ki kuş hissine bir tez başa ki sınırlar hai. Yer samacar hemeri website www.newsunayayar.gov.in ve hemeri newsunayayar mobile app par bhi upalabdh hai. के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। श्री अमित शाह के मादक द्रव्य नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता है। हिंदुस्तान ने गृह मंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे आदत 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार

and Maricon, San Juan. Mujemil ba? Ano ba naiki? Trupa mo kerja. Jisa karini ram ram ram ram ram ram. Kachi Wani ji. Hipan hikli maja hai. Ka sabad thoda ane arath jaja hai. Haan. Panji kachi ji bhasha me j. Panji muni ne jagri mithas hai. Ane hien chanau na ka mare ochi sabad me pan jaju mare dhal karen ta. To aj panji kachi ji andar. पांजो कच्छ जे इतिहास जे अरीसे में पा नजर पाओ तो पूरा तक तो जी सजी हिकड़ी केड़ी आए पगडंडी आए अंते पांजे जो को कच्छ जिले जे नखतरा तालुके जो जो को सरहदी सजो विस्तार एन जी ऐतिहासिक अने ही नरामो को सो मणी झुनो मणिया झुनो एड़ो जो को बुबेर घाम है इंजा पा घणे मरे एड़ा बोल जा पुरावा अने अने आज पर मारू उत चेता को ये की रात मजे जी पंक्ति पर उते लाकरी ने प्रख्यात पड़ा अने मारू चें पड़ता को सजन सोन जा भला गाल है सांजी को सजन सोन जा भला गाल असांजी भूल जा म भलड़े अई जाद असांजी को भूल जा म भलड़े अई जाद असांजी विसरों की वला आसा विसरों की वला आसा मेरा वा माने जा विसरों की वला आसा मेरा वा माने जा तबे सुकों ता आके नाए संद असांजी तबे सुकों ता आके नाए संद असांजी अरज असांजी आए ईज आके अरज अरज असांजी आए ईज आके मोब जी जित हो तत संभाली जा जाद असांजी मोब जी जित हो तत संभाली जा जाद असांजी अने ही बबिर गाम जा घरे मरे एड़ा पुरावा आए राजी हम चीज वस्तु आए ये जन के मारू जित पर मने ता कच्छ छड़ी ने वने न तो बड़न के जाद करे ता अने पाजली ने कतरा तालू के जो हैं चौं तो बबर गाम है ये पाला करे नहीं करे घोड़ो जो पर गाम है तो बबर गाम जी पां गाल सुनो तन के मारे हो अन पहला आपको लाठ मजे जो पां भजन सुनो अने पो ही बबर गाम जी कोरो विशेषता है कोरो गाल है ऐनी सजी पां गाल कर दस में तो हेलो पहला पां बबर गाम विशे माइटी जने से पहला हमको मारा समझो याद मजे जो भजन सुनो

गीता जी जो पंक्ति है जो श्लोक है के अनुसार ही ने अरे जो को साधु संत महात्मा वा ई सजे बुबे धाम जी मिली बस्ती के धर्म प्रति जागृत रखदा हुआ अध्यात्म जे क्षेत्र में जिन जो खास फाड़ो है खास प्रदान है अरा लखन सिंह भगत ई जो रवि बाण संप्रदाय जो मेन पायो वजा कनपुरा डूंगर सिंह भगत विश्राम भगत पांजी भगत तिमरे संत की सजी परंपरा चलाई आवी बुबर गाम में अज पण भजन भाव जे कारण ई बुबर गाम अज जानी तो है वो पाटीदार भगत जो को खिमजी भगत अने तुलसीदास भगत ई जो को संत हुआ ई पंजे काम से अन गाम में मरीज नाम ना मेरे अज पण बुबर में भगत सी जगजीवन विराजमान है ई आड़ो वरे जा जो को नंदरी उम्र में एक 2007-2003 में ई आश्रम जी गादी पे आया जो

Gracias.

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, हम कहें विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

गीतकार भूषण गौरा, संगीतकार रवि, आप संगी राहता है मुकेश अनाय सुमन कल्याण पूर्ण शर्मा, मॉडर्न गर्ल फिल्म आगीत श्रोविंद्रा फिल्म संगीत में कार्यक्रम में हवे आपने संभव्य किशोर कुमार ने लता मंगेशकर ने शर्मा आक्रमण फिल्म आगीत।

देख ले मुझे कि जो है कैसी भोल जाने।

आप सभी देशवासियों को स्वागत है दिन फिल्मी हिंदी गीतों का कार्यक्रम से जिसमें सर्वप्रथम आपने संभवीय श्री पंडित नरेंद्र शर्मानी अरिष्टा जिसमें संगीत आप श्रीनिवास खले गायक कहा से पंडित भीम सिंह जोशी लता मंगेशकर साथियों

जोशी यानी लता मंगेशकर अपनी साथियों ने सुना। आप सुन रहे हैं तो भक्ति रचना कार्यक्रम में हरे प्रश्न गीत संग्रह लिए के पहला आ एक महत्वपूर्ण संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की हम कहें, विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, हिमाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इसलिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। मनो ऐप या माई गांव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। હવે આપને સંભળાવીએ છીએ સાહિર લુધિયાણવી રચિત આ ગઝલ, ગાયક કલાકાર છે મુન્ની બેગમ।

शायर अहमद फराज, संगीत गुलाम अली, गायिका रुना लैला, हमने जो आप सामने रहा है पैर गजल। श्रोता मित्रों, हिंदी गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सामने रहा है शो आकाशवाणी में अहमदाबाद वडोदरा केंद्र पर थी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। खूब सुंदर, खूब सरस संदेश अने गंभीर बात कहती आ पंक्तियो लखी छे शायर नदा फाजीए, जमने गजल हवे आपने समझवा जई रही छु। लता मंगेशकर अने जगजीत सिंह ना स्वरमा सांभळीए नदा फाजीए रचित आ गजल, जेना संगीत छे जगजीत सिंह नो।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, हिमाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। याद रखिए रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शायर शून्य पावनपुरी ने क्या लिखना किया वाची समारोह शुरू करूँ। एक मैंने एक मैं थी बहुनी तमन्ना, बहुत थी मैंने एक जवानी इच्छा, करे छे तू प्याला ना खाली सुराही, करो छू हूँ प्याला सुराही ना खाली। मित्रों शून्य पावनपुरी ने आ शब्दों अने गजल ना स्वरूपे अनेक विचारों व्यक्त थया छे। અત્યારે હું આપને સમજાવવા જઈ રહી છું અંકિત ત્રિવેદી રચિત અગીત જેના સ્વર છે પાર્થિવ ગોહિલ અને સાથીઓનું।

0: के तुम्हारा नाम होता।
1: कार्यक्रम में अंतिम गीत समारोह समय छे, तो चलो पोपट भाई पसंदगी पर सुनाई दी फिल्म जैसल तोरल्लू गीत।

0: अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे,
1: तो बहनों हमें दिल में बसा के भुला न देना, ऐसे ही याद करते रहना। तो फरमाइश शो आज बहनों
2: अब समझ गया बहनों।

0: समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां आ रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटनिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुकन्या सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षत राजन। सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो एक पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माही और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity, and strong people-to-people

ये बातें सुनने वाले सभी फौजी भाइयों और फौजी बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपके हृदय में, मन में, मस्तिष्क में सदैव देश की सेवा, देश की सुरक्षा रहती है, इसलिए हम आपको प्रणाम, अभिनंदन, नमन करते हैं। हमारे सेना की तीनों पंख, भूमिबल, नौसेना, वायुसेना और बीएसएफ जैसे सभी सेना के दल जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे बस कार्यरत रहते हैं और इससे हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित रहता है, सुरक्षित अपना काम कर सकता है। तो बार बार आपका कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम कुछ खास ऐसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी आज जन्म तारीख है। लेकिन सबसे पहले देश की बात। जी हाँ, हर भारतीय के दिल का घोष होता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और वंदे मातरम पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में धारावाहिक उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था। हम सब जानते हैं वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और उन्होंने इस वंदे मातरम गीत को संस्कृत निष्ठ बंगाली में रचा था। यानी इस गीत में बंगाली यानी कि बंगला भाषा और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। आनंद मठ उपन्यास का यह एक अंश है जो सबसे पहले धारावाहिक के रूप में बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था, जो एक साहित्यिक पत्रिका थी और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित की जाती थी। और 1770 के दशक में सन्यासी विद्रोह पर आधारित इसकी कहानी थी, और आनंद मठ बाद में 1882 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। लेकिन इसका ये जो अंश है और ये जो गीत है, इसमें लोगों में बहुत ज्यादा जोश और उत्साह जगाया था। तो चलिए इसी बात पर हो जाए वंदे मातरम का ये गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म खेले हम जी जान से, इस फिल्म से। और जो मूल रचना में हिंदी भाषा के कुछ शब्द इसमें रखे हैं जो जावेद अख्तर ने लिखे हैं, और इसका संगीत दिया है सोहेल सेन ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, वो लंद जिसके हौसले हो उन्हें कोई नहीं रोक सकता और जिसके हृदय में आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित है वो कहां से कहां पहुंच सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है ए.टी. उषा जी। हाँ, आज उनका जन्मदिन है और हम आज उनके बारे में कुछ बात करेंगे। पिल्लवल्ला कंदी थेके परंदिल उषा। ए.टी. उषा भारत की महानतम महिला एथलीट है जिन्हें उड़न परी और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी पैरोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक जीते हैं और वो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और ऐसे कई खेल पुरस्कारों और उपाधियों से भी नवाजा गया है। उनके जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और कई शानदार रिकॉर्ड बनाए। वो आजकल राज्यसभा सांसद भी है। तो यही एक बात हमको सीखनी है इन महानुभावों से कि जब भी कोई मुसीबत आए तो मेहनत करके उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ऐसा एक गाना सुना जाए जब पीटी उषा दौड़ने वाली, खूब तेज दौड़ने वाली एथलीट के बारे में बात की है। तो बादल पे पांव है ये गाना आपको सुनाने जा रही हूँ। चक दे इंडिया फिल्म का ये गाना है। हेमा सरदेसाई और साथियों की आवाजें हैं। जयदीप साहनी की शब्द रचना, सलीम सुलेमान का संगीत।

है दोस्तों एक और विशेष व्यक्ति जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनका गाना ही सुना देते हैं तो शायद आपको अंदाजा लग जाएगा हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं ये गाना।

तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं बात करना चाहती हूँ हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे महान संगीतकारों में से एक राहुल देव बर्मन के बारे में जिन्हें प्यार से पंचम दा कहा जाता है। और उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक को हिंदी सिनेमा के संगीत को आधुनिक रूप देने का श्रेय प्राप्त है। उनकी धुन का जादू और उनके गाने का अंदाज दूसरे कलाकारों के पास अच्छी धुन प्रस्तुत करने का अंदाज लाजवाब है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि आज के युवा भी उनके गाने बड़े चाव से गाते हैं, जिसका उदाहरण है टीवी पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो, जिसमें युवा पीढ़ी जो है उन्हें भी राहुल देव बर्मन आरडी करके प्यार से लोग उन्हें बुलाते हैं। उनकी धुनें उनके गाने बड़े मजे से वो लोग गाते हैं। जी हाँ, और इनके बारे में कुछ रोचक बातें भी आपको बताऊंगी और उनके स्वरबद्ध किए हुए कितने सारे गाने हैं। 331 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है और जैसे हम सब जानते हैं वे दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन के इकलौते बेटे और पार्श्व गायिका सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के पति थे। और उन्हें पंचम नाम जो दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उन्हीं के द्वारा गाए हुए कुछ गाने जिसमें उन्होंने अपना अंदाज जो है दूसरों से अलग हटकर जो बताया है वो लाजवाब है। शोले फिल्म का ये गाना आपको सुनाने जा रही हूँ, राहुल देव बर्मन और साथियों की आवाज़ें हैं और उनका ही संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

से दिग्गज गायकों के साथ काम किया और उनकी जो जुगलबंदी है, जोड़ी है, वो मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकारों के साथ भी बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि आनंद ने, माफ कीजिए, अमर प्रेम फिल्म के गंभीर गाने हो या तीसरी मंजिल के मस्ती भरे गाने हो या गोलमाल फिल्म के जो गाने हैं, तो अनेक गीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और ऐसे गाने दिए जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए, एक ऐसा ही गाना आप तक पहुंचाया जा रहा है। खुशबू फिल्म का ये गाना है, आशा भोसले ने इसे गाया है।

विष्णु अपने पिताजी एसडी बर्मन के साथ संगीत का अभ्यास करते हुए और रिहर्सल में बैठते जब राहुल देव बर्मन, तो प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें पंचम का नाम दिया था और वही उनका हिंदी सिने जगत का नाम बन गया था। तो ऐसे राहुल देव बर्मन को अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं और दूसरे कई सम्मान मिले हैं, और सबसे ज्यादा उनको जो सम्मान है वो आज तक वो सबके हृदय में बसे हुए, उनकी धुनें आज भी लोग गुनगुनाते हैं, मस्ती से नाचते हैं। तो चलिए जय भारती कार्यक्रम का समापन करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ जो मस्ती भरा गाना है और तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना है, वज्र सुल्तानपुरी की शब्द रचना है मोहम्मद रफी की आवाज़।

और इसके साथ ही आज का जयपुर की समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय जवान। आप सुन रहे थे फौजी दोस्तों की सेवा में फिल्मी दावों का कार्यक्रम जय भारती आकाशवाणी के अहमदाबाद राजकोट भूज केंद्र से, आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट भूज केंद्र से। कुछ ही पलों में ठीक

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा

आपसे रिश्ता बढ़ा रहे थे। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के हिंद महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और

0: स्थिति, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वह

स्वागत है। रेल और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में

0: निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत अच्छे बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, साथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान के

0: सब लोगों को परेशान थे कि वे पैसा कहां से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलाया भी बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सी के राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that the contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश

मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट होटल शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तालातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना देखती है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल

0: सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंती ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा इसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है।

भाई मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला

बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकयान 26 अभियान के अंतर्गत अमरीका के मैरीलैंड राज्य के भारतीय और बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत के

इसी बार भारत मैक्सिको से बाहर किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भागीरथ का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र में ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंत समाप्त हुआ। नमस्कार।

गीतकार चंद्र जाडेजा, संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय, हवा अपना संग्रह कमल बारोट, साथियों स्वर में आ गरबो।

0: મિત્રો, અત્યારે સાંજના 5 થવા આવ્યા છે. અમારી આજની બીજી સભાના કાર્યક્રમોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સભાની શરૂઆતમાં હિન્દીમાં સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી થોડી જ વારમાં આપ સાંભળશો.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં શક્તિ સિંઘ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं. हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. आज उनके कार्यक्रम में बोटनिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित प्रधान.
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है. विदेश मंत्री बैरी फोरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा. गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण. दूसरा, सारथी का सम्मान हो. वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है. आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है. तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है. चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया.

हमारी वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिंह, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मुख्यमंत्री पंचम रानल हुलामराना ने जानीता आर डी बर्मने फिल्म छोटा नवाब के स्वतंत्र संगीत निर्देशक तरीके काम शुरू कर्यु। इन्हें तीसरी मंजिल, बहारों के सपने,

0: नमस्कार श्रोता मित्रों, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है जो हमारे सभी देशवासियों के लिए भी है। संकल्पना यह है कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उसी दिन उसी स्वर्णिम क्षण पर हमारा राष्ट्र एक पूर्णतः विकसित राष्ट्र, विकसित भारत 2047, ये ड्रीम विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा राष्ट्र एक ध्येय, एक लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है। आज हमारे आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में विकसित भारत संकल्प संस्थान जयपुर के स्थापक प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर महेश शर्मा उपस्थित है। डॉक्टर महेश जी, आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मावानी जी।
0: डॉक्टर महेश जी, आप सबसे पहले

0: तो ये बताइए कि ये जो हमारा सभी का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में सामान्य नागरिक है सभी एक ही लक्ष्य के ऊपर हमारी पूरी गतिविधियां पूरा एक जो स्वप्न है विकसित भारत 2047 उसकी ओर प्रगति कर रहे हैं और साथ ही में समृद्ध भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत ये भी हमारी संकल्पना है। तो ये जो एक पूरा विजन है उसमें रोड मैप में कई सारे आयाम है, कई सारे पहलू है, कई सारे डायमेंशंस है।
1: जी
0: तो सबसे पहले संकल्पना कौन सी है?
1: देखिए, भारत सनातन संस्कृति का संवाहक राष्ट्र है। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसने कर्णवंतो विश्व माल्यम का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना तो अहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। ना मुझे राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की कामना है, और ना ही पुनर्जन्म की भावना है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि इस देश में दुख से संतृप्त तो पीड़ित लोगों के दुखों के निवारण का निमित्त बन सकूं। ऐसी सनातन संस्कृति के संवाहक व्यक्ति के हाथ में जब भारत का नेतृत्व तो गया है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत आज संपूर्ण विश्व में नवीन नित नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। उन्होंने एक टर्म दिया है विकसित भारत का। हम सब जानते हैं कि भारत सनातन संस्कृति का संपन्न राष्ट्र रहा है। अनेक कालावधि से यदि हम देखें, वैदिक कालखंड से ही, तो हम प्राप्त करते हैं कि भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत की ऋषि परंपरा ने संपूर्ण विश्व को ज्ञानवान, चरित्रवान, संस्कारवान बनाने की प्रेरणा दी है। मानवता के कल्याण का भाव यहाँ वेद, उपनिषद, पुराणों आदि में सदैव से ही रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को आह्वान किया कि यह जो कालखंड है, यह अमृत काल का कालखंड है। इस अमृत काल के कालखंड में इस देश की समस्त सज्जन शक्ति, इस देश का युवा, किसान, मजदूर और प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम करे, अपनी उत्कृष्टता के साथ काम करे, तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमने विकसित भारत संकल्प संस्थान की स्थापना की और देश की समस्त सज्जन शक्ति का आशीर्वाद स्नेह लेते हुए पुनः यह राष्ट्र कैसे अपने उन मूल स्वरूप को प्राप्त हो जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, जहां का संस्कार संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करता था। हम लोग मवाणी जी जानते हैं कि जैसे आकाशवाणी को भी यदि हम कहेंगे तो यह शब्द भी हमारे पौराणिक शब्दों से ही निकला है कि प्राचीन काल में हम लोग देखते थे कि कोई आकाश से एक वाणी आती थी, उसको देववाणी या ईश्वर की वाणी के रूप में माना जाता था, और वही आकाशवाणी आज पूरे विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक। और आप लोग भी 1949 से ही यहाँ अहमदाबाद से इस विषय को लेकर विकसित भारत के निर्माण में अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प संस्थान भी अनेक आयामों को लेकर इन्हीं विषयों पर काम कर रहा है।
0: डॉक्टर महेश जी, जैसे कि आपने बताया कि पूरा राष्ट्र एक ही स्वप्न के लिए काम कर रहे हैं, विकसित भारत 2047, तो उसमें सबसे पहला एक शब्द है इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, इसके बारे में आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर व्यक्ति का समृद्ध विकास हो, जो सार्वलौकिक हो, सर्वस्पर्शी हो और बहुआयामी हो। भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था हुआ करती थी उसमें हम लोग देखते थे कि प्राचीन काल से ही वह गांव जो था वो समृद्धशाली और गौरवशाली गांव के रूप में रहता था। आज भी सरकारें अपनी ओर से यथा योग्य प्रयास कर रही हैं, अनेक सामाजिक संगठन प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर अपने अपने से जुड़े हुए संदर्भित लोगों को आगे लेकर चलने का। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा है, अंत्योदय का जो विषय दिया, कि समाज जीवन के अंतिम पायदान पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, वह भी समाज का ही घटक है, वह दूर नहीं है। और हम लोग कहते ही हैं कि चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक कल्याणकारी नीतियां समाज जीवन के अंतिम पायदान पर जीने वाले व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए हैं। कुछ वो आगे बढ़ें, कुछ जो समृद्धशाली समाज है वह झुक जाए, कुछ पीछे वाला तेज गति से चलेगा, तो एक समावेशी समाज का निर्माण होगा और एक श्रेष्ठ भारत के लिए, एक भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, खुशहाल भारत के लिए हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर आने वाले समय में और अधिक प्रयास करते हुए काम करने होंगे।

0: 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का नंबर 10 पर था और आज 2024 में भारत का नंबर विश्व इकोनॉमी में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और ये विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करने के लिए एक हमारा मजबूत आर्थिक फाउंडेशन है, ये होना आवश्यक है। इसके बारे में आप बताइए।
1: भारत एक विशाल महान संस्कृति को संपन्न राष्ट्र रहा है। दुनिया के तमाम लोगों को जब तन ढकने का भी नॉलेज नहीं था तब भारत में वेद मंत्रों की ऋचाओं का पाठ किया जाता था। दुनिया के तमाम कोने के लोग, हमने सुना है, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, फ्रांसीसी, यूरोपी सब लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। गुजरात के ही सूरत में अंग्रेजों ने यहाँ आकर अपना पड़ाव डाला। इतना आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत था जो 10वीं-11वीं शताब्दी तक पूरे विश्व का आर्थिक नेतृत्व करता रहा है। यहाँ की प्रजा, जनता, राजा, उस सब के पास दूध, धन आदि के भंडार थे, स्वर्ण भंडार थे। हमारे यहाँ के रत्नाभूषणों से बने हुए स्वर्ण मंदिरों की चर्चाएं भी हम हमारे गौरवशाली इतिहास में सुनते ही हैं। भारत जब आजाद हुआ उस कालावधि तक भी यदि हम देखेंगे तो $1 और 1 रुपए का मूल्य समकक्ष था। भारत उस समय भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की था। आज पुनः इस बात को लेकर भारत गर्वान्वित है कि भारत और भारतीयता संपूर्ण विश्व में स्थापित हो रही है और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत उभरती हुई दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता जा रहा है। आज हम 4थे स्थान पर पहुंचे हैं। यदि कुछ सैकड़ों वर्षों तक हमारा भारतीय जीवन दर्शन को जीने वाला समाज पूर्ण सामर्थ्य से लग जाएगा तो वह दिन दूर नहीं है जब हम विश्व का नेतृत्व करने वाली एक आर्थिक सामर्थ्य के रूप में होंगे। पर इसके साथ साथ ही एक चिंतनीय विषय बिंदु और है, वह है पर कैपिटा इनकम। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जब तक अधिक नहीं होगी तब तक जीवन जीने का स्तर सबको सहज भाव से मिल पाना कठिन होता है। आज हम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से थोड़े कमजोर हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर देखें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $68,000 के आसपास है जबकि भारत में यह केवल $3,000 के आसपास है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए इसे $15,000 के आसपास होना चाहिए। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करता हुआ अपनी आंखों के सामने देखेंगे।
0: जो आपने बताया कि पर कैपिटा इनकम है वो अभी $3,000 है और उसको विकसित भारत की संकल्पना के आने के लिए $15,000 की आवश्यकता है
1: जी।
0: तो ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए भी हमें बेसिकली एजुकेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो ये नॉलेज एम्पावरमेंट के लिए क्या हमारा प्लान है?
1: देखिए, वैसे तो भारत के अंदर जो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि विश्व को देने के लिए पर्याप्त सदैव से रहा है, शून्य से लेके, गणित से लेके, खगोल से लेके, विज्ञान से लेके, तकनीक से लेके, सदैव दुनिया को भारत ने दिया ही दिया है। धार्मिक मान्यताओं से लेकर जीवन जीने की कला तक, आर्थिक दृष्टि से देखें सामरिक विकास तक, सब कुछ भारत ने दिया है। और आज भी भारत के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हैं, जो IITs वगैरह, IIM है, इनसे पढ़े हुए डॉक्टर, वैज्ञानिक, CA, एडवोकेट, इंजीनियर संपूर्ण विश्व में सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक भारत के लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में नालंदा और तक्षशिला के जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं जो ज्ञान के स्रोत रहे हैं। उस समय भी फाइयान, हेनशांग जैसे चीनी दर्शन शास्त्रियों ने लिखा अपनी यात्राओं के वृतांत में कि भारत में शिक्षा के उत्कृष्टतम केंद्र संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहे। पर दुर्भाग्य से बीच का जो कालखंड आया उसमें हमने अपनी शैक्षणिक गरिमा को खो दिया। आज विकसित भारत संकल्प संस्थान पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के मनोभाव से लगा हुआ है और संपूर्ण विश्व में अपनी सज्जन शक्ति का सृजन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भारत में बने जो नालंदा और तक्षशिला के जैसा हो, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जैसा हो, जो स्टैनफोर्ड के जैसा हो, जहां A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट नहीं, A से अब्दुल कलाम, B से भगत सिंह, C से चंद्रशेखर, D से दुर्गादास भी पढ़ाया जाए, तो वहां पर A से अमेरिका, B से ब्राजील, C से कनाडा, D से डेनमार्क, E से इजिप्ट भी पढ़ाया जाए, तो आज के आधुनिक संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जिन विषयों पर काम कर रहे हैं तो A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B से ब्लॉकचेन, C से क्लाउड कंप्यूटिंग, D से डेटा माइनिंग, E से ई लर्निंग, F से फिनटेक और G से जियोपॉलिटिक्स के विषयों पर जब भारत प्रगति करेगा तो पूरे विश्व का नेतृत्व निश्चित तौर पर हम लोग कर रहे हैं, आगे तक करते रहेंगे। और भारत के लोगों को जो नेतृत्व सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है वह इस दृष्टि से दिया है कि मानवता के कल्याण का स्वभाव भारतीय सनातन जीवन पद्धति में ही संभव है। अन्य जीवन दर्शनों में वह भाव नहीं है, वहां व्यक्तिवाद का भाव है और यहां राष्ट्रवाद का भाव है। हम लोग राष्ट्र प्रथम और नेशन फर्स्ट की भावना से जीने वाले लोग हैं।
0: डॉक्टर अमर जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि मतलब ये जो शिक्षण और ज्ञान के क्षेत्र में हमारे क्या आवश्यकता है और किस विषयों पर हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही समृद्ध भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत के लिए प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ है वो भी सुदृढ़ रहना चाहिए। हेल्थ और वेलनेस ये भी हमारे एक जो प्रमुख मंत्र रहे, तो उसमें क्या संकल्पना है?
1: हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सदैव से कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। मनुष्य जब स्वस्थ रहेगा तो वह स्वयं के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए सोच पाएगा। स्वास्थ्य एक वृहद परिदृश्य है। आज के संदर्भ में देखें तो देश का स्वास्थ्य और देशवासियों का स्वास्थ्य अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। एक ओर हम रचनात्मक दृष्टि से देखें तो देश निरंतर नित नवीन प्रगति कर रहा है, परंतु दूसरी ओर देखें तो डायबिटीज में भारत नंबर वन है, मोटापे में भारत नंबर वन है। ऐसे ही प्रकार की अनेक प्रकार की जो अवसाद की बीमारियां छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है, डिप्रेशन की समस्याएं देखने को मिल रही है, बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही है, और इन सबके कारण जो अनेक प्रकार के तनाव परिवारों में होते जा रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन कम हो रहा है, छोटे परिवार होते जा रहे हैं, डिंग फैमिलीज खड़ी हो रही हैं, डबल इनकम नो चाइल्ड का कॉन्सेप्ट परिवारों में आता जा रहा है, ये सब हमारे नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है। एक समग्र राष्ट्र के निर्माण के लिए समग्र स्वास्थ्य योजना की आवश्यकता है। हम बीमार ही क्यों पड़े, हम प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी काम करें। हमारे वेदों में, पुराणों में, अनेक स्थानों पर एक स्वस्थ जीवन शैली कैसी होती है, जहां हम अपने आप को समृद्ध और सुसंस्कृत बनाते हुए राष्ट्र के लिए चिंतन करें। भारत सरकार ने अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, मेडिकल सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम नित नवीन प्रयोग करते जा रहे हैं, आयुर्वेद और योग के सामर्थ्य को संपूर्ण विश्व स्वीकार करने लगा है। हम भारतीय जीवन पद्धति को स्वीकार करें, आहार विचार में शुचिता लेकर आए, तो हम देखेंगे कि बीमारी का औसत स्तर कमजोर होने लगेगा, हटने लगेगा, दूर होने लगेगा। हम भारतीय जीवन शैली जो हमारी दादी नानियों के द्वारा घर परिवारों में ही बताई जाती थी, उसकी ओर भी हमको लौटना होगा, हमारे रूट्स की ओर हमें जाना पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने भी तय किया है कि हम देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण पैदा करेंगे, इस प्रकार के संस्थानों का निर्माण करेंगे, जहां भारत का और भारतवासियों का, उनके स्वास्थ्य का सुधार हो, उनका स्वास्थ्य यानी उनका आर्थिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, और फिर शरीर का स्वास्थ्य, और शरीर में भी मन, बुद्धि, विचार सब अगर निर्मल होंगे तो निश्चित मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी।
0: डॉक्टर महेश जी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। हमारी ये जो जंगल है उसका संवर्धन करने की आवश्यकता है। फिर बहुत सारे पहलू है उसके साथ साथ, एक तरफ से औद्योगिकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है, और साथ ही में हमारा पर्यावरण जो एक नाजुक है संतुलन मनुष्य जाति का अस्तित्व के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण भी एक महत्व का आयाम है। इसके लिए हम विकसित भारत में क्या संकल्पनाएं हैं?
1: देखिए, वैसे तो इस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को प्रकृति सम्मत जीवन जीने की दृष्टि से ही निर्मित किया है, और साथ ही चूंकि हम सभी प्राणियों में सबसे सुसंस्कृत जीव हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेकर ही समावेशी विकास करें। सबके साथ का अभिप्राय है कि प्रकृति में जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है, जहां जल, थल, अग्नि, आकाश, पवन सबकी हम अगर बात करते हैं, तो सबके समाहित विकास की जिम्मेदारी मनुष्य की है। यद्यपि यह सत्य है कि बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण हमने हमारे इकोसिस्टम को कमजोर किया है। जहरीली वायु, नंगे पर्वत, हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे क्या, यही पर्यावरण संरक्षण है? और दुर्भाग्य से कई बार पर्यावरण संरक्षण पर होने वाली चिंताएं भी 5-स्टार होटलों में हो रही हैं, जहां की एसी की गर्मी से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को भी कमजोर कर रही हैं। तो विकसित भारत संकल्प संस्थान ने एक संकल्पना ली है कि एक स्वस्थ पर्यावरण की जागरूकता आम व्यक्ति में कैसे आए। यद्यपि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही हमारा मनुष्य जीवन जो है वो धर्म सम्मत जीने की जो प्रवृत्ति देता था, जहां चींटी को भी दाना डालने की बात थी, जहां तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा रही, तुलसी और पीपल के पौधों को हमने देव के रूप में इसलिए स्वीकार किया कि वो 2400 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उनके अंदर के एल्कलॉइड्स शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं। तो मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से देश के सभी श्रोतागणों से भी निवेदन करूंगा कि यह पर्यावरण अगर संरक्षित रहेगा तो ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। आइए मिलकर एक सुसंस्कृत विश्व अभी आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम देकर जाएं, तो उसके लिए हमको प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के कालखंड में कम से कम 4 पौधे लगाने की तो नैतिक जिम्मेदारी ही है। 4 बड़े पौधे को पेड़ बनाने तक की जिम्मेदारी मनुष्य को लेनी चाहिए अपने

0: जन्मदिन के अवसर पर, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति या अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति के अवसर पर नंदन कानन बनाने की परंपरा हमारी होनी चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि जो बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं उनको कुछ अच्छे एनजीओ को देके, अच्छे सामाजिक संगठनों के साथ इस विषय को लेकर ना केवल पेड़ लगाना वरन वह जीवित कैसे रहेगा और अन्य किस प्रकार से जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है, समुद्र के अंदर का भी जो पर्यावरण है वह भी हमें संतुलित रखने की आवश्यकता है। सैकड़ों प्रकार की प्रजातियां शून्य होती जा रही है। कई स्थानों पर हम देखेंगे कि गौरैया का अस्तित्व संकट में है। कई स्थानों पर देखेंगे कि अनेक ऐसे प्रकार के वन्य जीव असुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत बार हम देखते हैं कि जंगलों से आकर कभी बाघ चीते भी शहरों में आ जाते हैं क्योंकि मनुष्य ने उनके प्राकृतिक आवासों को छोटा बना दिया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने विकास की भी चिंता करें और अपने सहचर जितने भी वन्य जीव हैं उनके संरक्षण संवर्धन की भी चिंता करें। विकसित भारत संकल्प संस्थान ने भी पूरे देश में इस प्रकार की मुहिम चला रखी है और अनेक अवसरों पर करोड़ों पेड़ अभी तक लगाए गए। आगे की भी कार्य योजना है।
1: डॉक्टर महेश जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। श्रोता मित्रों के लिए आपकी पसंदगी का फिल्म गीत।
0: मुझे लगता है कि आज हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र को समर्पित मेरा रंग दे बसंती चोला, यह गीत आकाशवाणी अहमदाबाद के माध्यम से सुनाएंगे तो बहुत आनंद रहेगा। मेरा रंग

0: जैसे कि महेश जी आपने बताया कि प्राचीन काल से ही भारत तकनीक एवं नवाचार की भूमि रही है, और आज के जमाने में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उसको भी हमारी सरकार प्रमोट कर रही है, और वर्ल्ड में से जो हाईएस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं वो भारत से ही है। तो इसके बारे में जो संकल्पना है विकसित भारत 2047 के लिए, इसके बारे में आप बताइए।
1: देखिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति हर समस्या में से समाधान और नए मार्ग ढूंढ लेता है, और साथ में ही वो इतना आइडिया क्रिएटर है कि जब भी उसको जिस विषय के बारे में उसे जानकारी नहीं भी है तो भी अगर उससे चर्चा कर देंगे तो 200 सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देने को तैयार है कि देश को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए। और उसी मानसिकता में से निकल कर आता है स्टार्टअप इनोवेशन। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि भारत के युवा आज तकनीकी की दृष्टि से भी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे गूगल में हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में हो, चाहे सत्य नडेला हो, चाहे सुंदर पिचई हो, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले भारतीय हो, भारतीय युवा वैज्ञानिक IITs के माध्यम से, IIM के माध्यम से और छोटे छोटे गांवों के माध्यम से भी स्टार्टअप्स को बना रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स न केवल हमारे जीवन को सरल बना रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि पिछले 10-20 वर्षों में जो न्यू एज जनरेशन के लोगों ने ओयो, उबर, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम ऐसे सैकड़ों प्रकार के इनोवेशन खड़े किए हैं, जो मल्टी बिलियन कंपनीज के रूप में खड़े हुए हैं, भारत के युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने में भी ये मदद कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक युवा को कहूंगा कि भारत में परंपरा भी इसी दृष्टि की रही है कि आप लोगों को रोजगार देने वाले की मनोवृत्ति का बनना चाहिए, और सरकारों को, समाज को भी चाहिए कि ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करें। ऐसी अनकही कहानियों को आकाशवाणी भी अपने माध्यम से लेकर देश भर में सुनाए ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरित हों। ऐसा नवाचार युक्त वातावरण देश में और आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा और अभिलाषा रहेगी।
0: डॉक्टर महेश, आपने बहुत ही अच्छी बात किया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में, साथ ही में राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच में अरस्परस सहयोग रहे, सद्भावना रहे, ये भी एक आवश्यकता है। तो ये जो परस्पर सद्भावना की और भाईचारा की भावना है, सहयोग की भावना है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या आप कार्य कर रहे हैं?
1: देखिए, भारत इतने महान लोगों की पुण्य भूमि है, जहाँ कहा गया है कि गायन्ति देवाः किलकित कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह वह देव भूमि है, वह पुण्य भूमि है जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। ये भगवान राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ महाराणा प्रताप हुए हैं, यहाँ शिवाजी हुए हैं, यहाँ दानवीर कर्ण हुए हैं। ऐसे युग पुरुषों से प्रेरणा लेकर, जिनका रक्त हमारी शिराओं में समाहित हो रहा है, सबको साथ लेकर चलने की मनोवृत्ति इस भारत में रही है। तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की दृष्टि से देखें तो जो विकसित भारत संकल्प संस्थान ने संकल्प लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भारत में बने, जहां देयर इज नो फीस काउंटर फॉर द नीडी स्टूडेंट्स, किसी भी ऐसे विद्यार्थी के लिए कोई फीस काउंटर नहीं हो जो आर्थिक दृष्टि से कम समृद्ध है, उस दृष्टि से हमने देश के अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैग्सेसे, वीर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अनेक लोगों का एक मेंटर बोर्ड बनाया है, मार्गदर्शक मंडल बनाया है। साथ ही भारत के अंदर जो 84,000 से ज्यादा कॉलेज हैं, 26,00,000 से ज्यादा स्कूल हैं, 1,198 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, उनके डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, VC सबको आग्रह किया जा रहा है कि आइए एक समृद्ध, सुसंस्कृत, विकसित राष्ट्र का निर्माण में अपने हिस्से की आहुति दीजिए। जिनके पास विचार है, स्वभाव है, आशीर्वाद है, वो सब प्राप्त हो। और विकसित भारत संकल्प संस्थान विश्व का अनूठा संस्थान इस दृष्टि से भी बन रहा है

0: हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा संकल्प लिया गया है कि 1,00,000 गांव से पानी, मिट्टी, अन्न, दान और सज्जन शक्ति का संग्रह करते हुए इस अभियान को लेकर चलना है। 1,00,000 से अधिक कक्षा कक्ष वहां बनने हैं। 1,00,000 विद्यालय गांवों की मिट्टी से निर्मित ईंटों से जब वह परिसर का निर्माण होगा तो एक सांस्कृतिक लघु भारत वहां पर दिखाई देगा। वहां पर आने वाले देश के 6,00,000 से अधिक गांव से पढ़ने वाले विद्यार्थी उस परिसर में आकर रह सकें, पढ़ सकें। इनोवेशन से लेकर स्टार्टअप तक और वैदिक धर्म दर्शन नीति इतिहास साहित्य से लेकर समग्र विषयों के विषय विशेषज्ञ वहां से तैयार हों। दुनिया के अंदर जितने नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जितने प्रोफेसर डीन डायरेक्टर है, वो भी गेस्ट फैकल्टीज के रूप में आए। दुनिया के 197 देशों के अंदर जितना भी भारतीय समुदाय है उनका भी एक समग्र आशीर्वाद लेने की रणनीति बन रही है, ताकि भारत का यह जो ज्ञान का केंद्र बनने वाला है आने वाले हजारों वर्षों तक भारतीय जीवन दर्शन को शाश्वत और निरंतर करते हुए एक ज्ञान की गंगा का प्रवाह लेकर आगे बढ़े, इस मनोभाव से यह सब चल रहा है।
1: हमारे प्राचीन ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिखी गई है और हम सभी इसी मंत्र के साथ ही अपना जीवन जी रहे हैं। सभी के लिए, सभी के मन में मानवता का एक भावना हो और साथ ही में जो पूरा समाज है वो एक सामाजिक समरसता की भावना से आगे बढ़ रहा है, इसके लिए आप बताइए।
0: देखिए, हमारे यहाँ कहा, अयम निजह परो वेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह जो ग्लोबल विलेज की बात आज पूरी दुनिया करने वाली है, कर रही है, ये 10,000 वर्ष से पूर्व वेदों में लिखा हुआ है। यह मेरा है, वह तेरा है, ये तो छोटे मनोवृत्ति के लोग काम करते हैं। यहाँ तो इस पद्धति के लोग रहे हैं कि हर बार प्रभु भारत भू पर नव जन्म मिले नव तन पाकर, हर बार प्राण उत्सर्ग करूं माँ के चरणों में हंसगा कर। मेरा रंग दे बसंती चोला कहने वाले लोग जिन्होंने केवल देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसा संपूर्ण विश्व को अपना मानने वाला जो भारतीय जीवन दर्शन है उसका प्रभाव आज विश्व भर में देखने को मिलता है। जैसे हम देखेंगे कि थाईलैंड के अंदर एक नदी है जिसका नाम है मैगोंग, उसका नाम माँ गंगा से पड़ा हुआ है। इंडोनेशिया का जो गरुड़ एयरवेज है वो हमारे गरुड़ पक्षी के नाम पर पड़ा हुआ है। वहां के राष्ट्रपति ने अपने बेटे का नाम सुकर्णो रखा। जब उनको पूछा गया कि आपने सुकर्णो क्यों रखा, यद्यपि वो इस्लामिक मतावलंबी है, वो कहते हैं कि हमने हमारी पूजा पद्धति बदली है, हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं, सनातनी रहे हैं। महाभारत के अंदर जो कर्ण थे वो कर्ण बहुत अच्छे पात्र थे, पर उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। मैं चाहता हूं मेरा बेटा कर्ण के जैसा बने, लेकिन वह अच्छे संस्कार वाला होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसका नाम सुकर्णो रखा। तो हमारी सभ्यता संस्कृति संपूर्ण विश्व का सदैव से नेतृत्व करने वाली ही रही है।
1: विकसित भारत 2047 इस विषय पर श्रोताओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन देने के लिए और डॉक्टर महेश शर्मा, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में उपस्थित रहे। आकाशवाणी अहमदाबाद परिवार की ओर से आपका विशेष आभार, धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाशवाणी अहमदाबाद को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना उत्कृष्ट परिसर आपने बना रखा है और 1949 से ही लेकर अभी तक आप लोग इस राष्ट्र जागरण के अभियान में लगे हुए हैं। तो आकाशवाणी की अपनी यह प्रतिष्ठा नित निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसी शुभेच्छा के साथ प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।

विकसित भारत 2047 पर विकसित भारत संकल्प संस्थान के संस्थापक प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर महेश शर्मा के साथ हितेश मावाणी की भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।

0: हाणे ताईं ममता खुबचंदा खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 ॾींहनि जी सेशल्स यात्रा ते विक्टोरिया पहुतो आहे। अमेरिका जे परॾेही मंत्री मार्को रूबियो चयो, ट्रंप जी हुकुमरानी भारत खे अमेरिका जो सभ खां वेझे रिथाबंद बांगे भाई वारनि मां हिकु मञींदो आहे। घरू ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात जे ख़ासि 14 शहरनि में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सीअ जी शुभ शुरूआति कई। तमिल फिल्मुनि जे नामियारे अदाकार ऐं हिदायतकार के भाग्यराज जो चेन्नईअ में 73 सालनि जी उमिरि में चालाणो। आबहवा महकमे ईंदड़ 2-3 ॾींहनि जे दौरान ओलह बंगाल जे हेठाईअ वारनि इलाइक़नि ऐं सिक्किम में ज़ोरदार बरसाति जा इम्कान ज़ाहिर कया। ऐं US ओपन बैडमिंटन चटाभेटीअ में भारत जी देविका सिहा ऐं रौनक चौहान सेमीफाइनल में पंहिंजी जाइ पुख्ती कई। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 ॾींहनि जी सेशल्स यात्रा ते विक्टोरिया पहुतो आहे। हवाई अॾे ते सेशल्स जे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनीअ उन जो दिलि सां स्वागत कयो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदीअ इन ॻाल्हि लाइ राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी जी साराह कई। प्रधानमंत्रीअ चयो त सेशल्स हिंद महासागर में भारत जो अहम सामुंडी बांगे भाई वार आहे ऐं पको दोस्त बि आहे। श्री मोदीअ ॿिन्ही मुल्कनि जी अवाम जे फ़ाइदे लाइ भारत ऐं सेशल्स जे गहरे तालुक़नि ऐं सहकार खे ओॼ ॾियण वास्ते सार्थक यात्रा जी कामना कई। प्रधानमंत्री हवाई अॾे ते गर्म जोशीअ सां स्वागत करण लाइ प्रवासी भारतीय बिरादरीअ जी शुकराना मञिया। प्रधानमंत्रीअ सेशल्स जे 50वें आज़ादी ॾींहं जे समारोह में मुख्य महिमान तौरु हू साहिब सेशल्स जे राष्ट्रपतिअ जे समारोह में शिरकत कंदड़ भारत जो पहिरियों प्रधानमंत्री हूंदो। घरू ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह चयो आहे त सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सीअ जो ईंदड़ 2 सालनि में मुल्क भर जे 500 शहरनि ऐं कस्बनि में विस्तार कयो वेंदो। गुजरात में भारत टैक्सीअ जो शुभ मुहूर्त कंदे श्री शाह इन पहल खे सहकारी खिते में हिकु क्रांतिकारी क़दम ॿुधायो। हुन चयो त भारत टैक्सीअ जो मक़सदु ड्राइवरनि खे सिधो लाभ पहुचाइणु ऐं बेरियाव तोड़े शफ़ाफ़ इंतिज़ाम जी ख़ातिरी करणु आहे। अचो त ॿुधूं।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह डेयरी उत्पादन से लागापियल सहकारी अभियान की कामयाबी जो भी जिक्र कयो। अचो तो बुदू।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IFFCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइव

0: सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
1: अमरीकी परदेही मंत्री मार्को रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की सारा कंदे चयो त भारत जिक्र जोगी आर्थिक तरक्की कई है ए वैश्विक सतह से उनको किरदार लगातार मजबूत बणजी रो है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो चयो त ट्रंप की हुकुमरानी भारत के सब का करीबी रिथाबंद बांगे बाई वार तौर मनेंदो आहे। अचो त बुधूं
2: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: ही समाचार तभी आकाशवाणी ता बुधी रहा हो। वधिक समाचारन जी तफसील जे लिए तवा असंजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो कर सको था। यही समाचार तवा असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात से भी बुधी सको था। तमिल फिल्मों जो मशहूर अदाकार डायरेक्टर ए स्क्रीन प्ले लेखक के भाग्यराज जो अज चेन्नई में 73 साल की उम्र में चालाणो थो। हू साहिब तमिल फिल्मों में पेंे शानदार स्क्रीन प्ले ए डायलॉग लिखण के लिए जातो वेंदो हो। हुन साहिब 25 खां वधीक तमिल फिल्मुनि जी हिदायत कई ऐं लॻभॻि 75 फिल्मुनि में अदाकारी कई। राज्य सरकार समूरे राजकीय सन्मान सां उन जे अंतिम संस्कार जी पधराई कई। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय समेत केतिरनि ई अॻवाननि उन खे श्रद्धांजलि अर्पण कई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महान फिल्मुनि निर्माता अदाकार ऐं स्क्रीन प्ले लेखक के भाग्यराज जे चालाणे ते गहरे डुख जो इज़हार कयो। उपराष्ट्रपति सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त श्री भाग्यराज पंहिंजी यादगार फिल्मुनि कहाणियुनि खे चवण जी ख़ासि अदा ऐं जिक्र जोगी स्क्रीन प्ले डायलॉग ज़रिए भारतीय फिल्म जगत में गैर मामूली किरदारु अदा कयो। आबहवा महकमे ईंदड़ 3-4 ॾींहनि दौरान उत्तरी अरब सागर गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जे बाक़ी हिसनि झारखंड बिहार ऐं उत्तर प्रदेश टोड़े उत्तराखंड जे कुझु हिसनि में ॾखण ओलह में चौमासे जे अचण जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। महकमे ईंदड़ ॿिनि ॾींहनि जे में ओलह बंगाल जे हेठाईअ वारनि इलाइक़नि ऐं सिक्किम में ज़ोरदार बरसाति जा इम्कान ज़ाहिर कया आहिनि। एटमी तवानाई मंत्री अजित कुमार मोहंतीअ तमिलनाडुअ जे कल्पकम में इंदिरा गांधी एटमी तहक़ीक़ मर्कज़ में विश्व जे पहिरें हाइड्रोजन पैदावार मर्कज़ जी शुरूआति कई। हिकु रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाणे सुबुह जो 11 बजे आकाशवाणी तां मन की बात कार्यक्रम जे दौरान देह तोड़े परदेह जे माण्हुनि सां पंहिंजा वीचार बंडींदो। इहा इन माहियाने रेडियो कार्यक्रम जी 125 कड़ी हूंदी। कार्यक्रम जो सिधो नशरियात आकाशवाणी ऐं दूरदर्शन जा सभई नेटवर्क NIR न्यूज़ वेबसाइट ऐं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ते बि कयो वेंदो। इन जो सिधो नशरियात NIR न्यूज़ DD न्यूज़ प्रधानमंत्री दफ़्तर तोड़े सूचना ऐं नशरियात वज़रात जे यूट्यूब चैनल ते पिणु कयो वेंदो। हिंदी नशरियात जे तुरत बैदि आकाशवाणीअ खां इलाइक़ाई ॿोलियुनि में बि इन कार्यक्रम खे नशर कयो वेंदो। कोलकाता जे तारा तला इमारत में थियल हादसे में फौतियुनि जो अदद 17 थी वियो। राहत ऐं बचाव जे कमनि में फ़ौज, राष्ट्रीय आपदा मोचन दस्तो, रेलवे, नागरिक सलामती, राज्य आपदा जवाबी दस्तो ऐं ॿिया इदारा मिली करे कमु करे रहिया आहिनि। रांदुनि पासे रुख कंदे US ओपन बैडमिंटन चटाभेटीअ में भारत जी देविका सिहांग ऐं रौनक चौहान सेमीफाइनल में पंहिंजी जाइ पुख्ती कई आहे। कैलिफोर्निया जे फुल

फुलरटन में महिला सिंगल से क्वालिफायर में देविका जापान जी रिको गुंजीअ खे शिकस्त ॾिनी। हाणे हुन जो सामनो डेनमार्क जी लाइन क्रिस्टोफरसन सां थींदो। मुख्य समाचार हिकु भेरो ॿीहर ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिनि ॾींहनि जी सेशल्स यात्रा ते विक्टोरिया पहुतो। अमेरिका जे परॾेही मंत्री मार्को रूबियो चयो त ट्रंप जी हुकुमरानी भारत खे अमेरिका जो सभ खां वेझो रिथाबंद भाङे भाईवार मां हिकु मञींदो आहे। घरू ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात जे ख़ासि 14 शहरनि में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सीअ जी शुभ शुरूआत कई। सिंधी समाचारनि जो इहो अंक ते समाप्त थियो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। नमस्ते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से 1 दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं, उसने जवाब दिया। तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए, एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। वो भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चल दिए। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। दोनों सज्जनों ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वर

इन शंका निवारण की। महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला दिए, यूं कहो कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 कलाराज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था किला, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोथड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहन मेज पर डटते थे, यहां पांव धोना आवश्यक था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, सेवक ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, सेवक ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, मगर वहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं, कुंवर जो ठहरा। 11:30 बजे मेहरा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न जला, लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता, फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं। मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था पर लैंप नदारित। देवयोग उसी वक्त मुंशी रियासत अलिया निकले, मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला,
सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना।

0: वो कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज आएगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दो, लेकिन यह सामर्थ्य कहां थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह ना थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे, कोई बड़ा आदमी होगा अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है। ये सभी बातें वहां लोग कहते रहे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन में घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से, आवाज़ें सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: पत्थर है वो मुझे रोक टोक कहते हैं लोग।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से, आवाज़ श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and

0: environment reforms of our honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी TET के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए TET प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी

0: हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्टी अनिल मिश्रा रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स फॉलोइंग द डोनेशन एम्बेजलमेंट केस. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
3: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco Dimar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast patrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister Modi will be the guest of honor at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. He is the first ever Indian Prime Minister to attend the National Day celebration of Seychelles. Akshit Vaidyan, Akashwani News.
2: Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence, and its contribution to peacekeeping, maritime security, and multilateral diplomacy. Indian Navy's indigenously built survey vessel large INS Ikshak reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. The 135th episode of the monthly radio program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Trust today issued a statement on this issue. It said the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The Trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram Temple. It

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली

अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो। हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आरडी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलचन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलचन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बाबरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आज के फनकार आ कार्यक्रम आप आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा केंद्र पर थी सांभळी रह्या हता।

0: મિત્રો, બરાબર 10 વાગે સંગીતનો અખિલ ભારતીય કાર્યક્રમ આપ અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી સાંભળી શકશો.
1: યે આકાશવાણી હૈ સંગીત કે અખિલ ભારતીય કાર્યક્રમ મે પ્રસ્તુત હૈ પ્રભાત મુખોપાધ્યાય કા સંતૂર વાદન. સમૃદ્ધ સંગીત પરંપરા વાલે પરિવાર મે જન્મે પ્રભાત ને સંતૂર કી દુનિયા મે અપની અલગ પહેચાન બનાઈ હૈ. આપને સબસે પહેલે શ્રી દુલાલ રોય સે સંગીત કી શિક્ષા પ્રાપ્ત કી. इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई. आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की. वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं. संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है. आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं. आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए. आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया. हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी. एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं.
2: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय. Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of santoor.
3: He was initiated by Sri Dulal Roy.
2: He took taleem from Ustad Sabir Khan in tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in santoor from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
1: Aapke saath aaj is karyakram mein tabla par sangat kar rahe hain Mustafa Hussain. Prabhat Mukhopadhyay apne karyakram ka aarambh राग रागेश्री से कर रहे हैं. प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला. विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन. प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री. ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल.

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted external affairs. The tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation.